नरकिया पाओ जग पर हंस कल जाए गुरमक नादान गुरमक वेदान गुरमक राय समाए गुरु ईश्वर गुरु गुरु परमा

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरे रासा श्लोक महला पहला। दुख दारू सुकरो पाया, जा सुख थम ना होए। तू करता करना मैं नाही, जाहो करे ना होए। बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाए लखिया रहाओ। जात मैं जोत, जोत मैं चाहता, अकाल कला भरपूर रहिया। तू सच्चा साहिब सिफत स्वालियो, जिन की ती सो पर पाया। कहो नानक कते किया बाता, सो किच करना सो कर रहिया। सोदा राग आसा महला पहला, इकुंका सतगुर परसा। सोदर तेरा के हासु कर के हा,

जाएं। रंगी रंगी पाती करका जिनसी माया जिन उपाय, करका देखे कि ता अपना ज्योतिष जीव दियाए। ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न कर न जाए। सोपत सा सहापत साहेब नानक रहन रजाए। आसा महला पहला सुन वड़ा आखे सब कोई,

सब सुरति मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी कुर गुर हाय, कहन न चाहे तेरी तिल वड्याई, सब सत सब थक संग चंगियाया, सिद्धा पुरखा किया वंडियाया, तुद विन सिद्धि किने न पाया, कर्म मिले नाही थकराया, अक्खन वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे बंदारा, जिस तू दे तिसै किया चारा, नानक सच

आप देवत तेरी दात जिंदिन खा के की तेरा कसम सारे ते कम जा नानक नावे बाज सुना रा गुजरी महला चौथा हर के चंद सतगुर सतपुर का।

sangat kun prakash jin har har har ras nam na paya te bhagin jampas jo satgur saran sangat nahi aaye trik jive trik jivas jin har jan satgur sangat paye tin do mastak likhya lakas dhan dhan sat sangat chit har ras paya mil jan nanak naam prakash राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितवे उदम चा हर हर जियो परिया सैल पत्र में चंतु पाए था कर जग अगे कर तरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सुतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुखे खस

करिया उड़े उड़ अवे से कोसा तिस बच्चे बचरे छरिया थिं कवन कलावे कवन चुकावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस असत सदान ठाकु खाता तरिया जन नानक पल पल सत पल चाहिया तेरा अंत न पारा भरिया रागासा महला छोटा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दतारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक चंत विचारा तू गट गट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक बेखारे जी सब तेरी चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी ओ तुत बिन अवर

तू करता सचिया मैं दसाई जो तू पावे सो इतसी जो तू दे होए ओ पाए रहाओ सब तेरी तू सब नीतियाया जिसनो के पकड़े तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख कवाया तू द आप विचोरिया आप मिलाया तू दरी

मन एक न चेता सुमुर मना हर बिसरत तेरे कुन कलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुक्त जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा।

चरण के, जनन मृत जात रंग माया के रहाओ। जप तप संजम धर्म नक माया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संजम धर्म

देव किसी कसब कर तारा मोरा चानिज कर दे करिया सब बैरन को अज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा थोर बचन की रहे प्यासा तुम्हें चा कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सी का हमारे तरिये चुन चुन सत्र हमारे मरिये आप हाथ दे मुझे उबरिये मलन का त्रस निवरिये हु जो सदा हमारे पच्चा सिरियस तुझ जू करियो रच्चा राख ले ओ मोहे राख नहारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंधु स्तन के हंता तुम हो पूरी चतुर तस्कन।

शिवकन को शिवकुन सुकतियो सत्रन को बलमो पलिकियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पचानत चित्ती ते कुंचर असतुल्ला सब पर कृपा दृष्ट कर फुल्ला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए सतन के सुखी एक एक की पीर पचान कट कट के पट पट की जान जब उत कर

उत भुज खम्भ रथ दीनी कहो फुल राजा हे बेटा कहो सिमत पयो संक इकेटा सगरी सृष्टि काय अचंबा आदि जुगाद स्वरूप सी अंबा आबराचा मेरी तुम करो सिक उबार असिक संकरो दुष्ट चिते उतवत उतपाता सकल मलेच करो रन गाता जे अस तुज थव सरनी परे तिनके दुष्ट कट हवे मरे पुरक चवन पक परे तिहारे तिनके तुम संग सब तारे जो कल को एक बार दिया है ताके कल निकट न है रचा होए तय सब कला दुष्ट अरिष्ट तेरे तत्काला कृपा दृष्टन चाय निहारे हो ताके तपत नक मोहर हो रित सिद्ध कर्मो सब होई।

दुख न थे से भी आपत कोई अरियो सुने कुंग चोई आए सोरस न पावई सुने मोर चित लाए छुतरत आवई दुख तरित बोन कत न तिन नर के रहे हो जो या की एक बार चोपे को कह चोपे संबत शस्त्र सह सब निचय अर्ध सस्पन तिन कहिचय बव द्रव सुधी

सिमरत शास्त्र वेद सब वो वेद कह हम एक न जानियो श्री अस्त पान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहो सब तो ही पकानियो द्वारा सगल द्वार को।

आनंद बया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सती मन वजिया वडाया राग रतन परवार परिया शब्द कवनी।